मखलमथिलगी थरुम क्या संदोकतुने तहन जरीबा सी मेघर साम उहुम दशमिक मंगा दशन दोक जरीबा आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दिगिनी।

0: भारत की अवांग नोंगपोक चिदाइदा इरेबाक इमा मणिपुरना मदोम चिकना तुमथिल ओइनांगान थोइरी वांगला बसिंगसांग परेंगी चिंगलोन मापलना इकोई क्वेश्चनदुना लैरेबाक की लमदम गुमना महौसागी फसपत्तना लेतेंगदुना लैरी ngallingaigi matamdagi ipa ipu ima iben singna lamdam asibu saithabada yamna nungsina asumna saithai chingna koina pansaba chingmina koina pangakpa khaina yangkok maungni batau asumna iramdam ima manipur asida chingmi tami punna nungsi chanana hingmen narak pagi maung matau ekoina hangatna yenglubada uba phangi असिद सुनत्तना इरमदम मणिपुर असिद मालेम गी मफम अतैद फंगद्रबा इमा मणिपुर खक्तद फंगबा लैगी लैखलदा सिरोई लिलीना अवांग बचिंगदोलदा मतम नाइना सातुना मालेमदा इमा मणिपुरबु मसकताकली असुमना तांगलब सिरोई लिली हाइरिब लै मखल असि भारतना मिखा पोलिंगै इमा मणिपुरना भारत की फिबाल नुंगद चंद्रिंगै ख्रिस्तकुम लिसिंग मचमापल निफुनिपान इंगदा ब्रिटिश बोटनिस मिस्टर फ्रैंक किंगडन वार्ड कौबा मिसक अमना महाक मसामक की लोइनबी मेक्लिन ग लोइनना भारत तलाकतुना मणिपुरदा कोइरखी अदुगा मणिपुर की उखरुल डिस्ट्रिक्ट की तांकुल सिंह नमन ताबा हाइबदी खुंदारीबा सिरुई कासों कौबा चिंगी मफम असिदा थुंगलखी
1: उखरुल मणिपुर की कोनु इम्फाल शहर डगी नोंगपोक माई कई रोम दा किलोमीटर मरीफू को हुमदोय रोम चल लगा लेबा मफम ममा खंगे हाईरी बा मफम से समुद्र इमाई डगी चौराक ना मीटर लिसिंग अमग चाटेट कुंठा डगी ना लिसिंग अनि चौंगा फाव वांग ना लेबा मणिपुर इमा की महुसा की फजरब सक्तम कया कया तन थन लेरब सिरुई कासों हाई न खंगनरब चिंगी लमदम अमने इंग्लिश बोटनिस फ्रैंक किंगडन वर्ड्स न सिरोई चिंग द लैसा तम जरीबी लैरांग अछिबु इंग्लिश सिंग मग चमापन निफुग तरुक त थेंगनखी

0: ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯒꯨꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯔꯨꯏ ꯀꯁꯣꯡ ꯇꯤꯃꯔꯥꯎꯟꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯤꯂꯤꯌꯝ ꯃꯦꯛꯂꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯅꯤꯐꯨꯒ ꯅꯤꯄꯥꯜꯗ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯕꯣꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯅꯦꯝꯗ ꯂꯤꯂꯤꯌꯝ ꯃꯦꯛꯂꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤ꯫
1: ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯀꯥꯁꯣꯡ ꯇꯤꯃꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯡꯂꯕ ꯆꯤꯡꯗꯣꯜꯗ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯂꯩꯔꯥꯡꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯔꯨꯏ ꯀꯥꯁꯣꯡ ꯇꯤꯃꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯔꯨꯏ ꯀꯥꯁꯣꯡ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯀꯧꯅꯕ ꯃꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯩ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯡꯂꯕ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯗ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯥꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯥꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯥꯠꯂꯤ꯫
0: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯐꯨꯠ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅ ꯐꯨꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯡꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅ ꯇꯔꯦꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯠꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯂꯩ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯇꯔꯥꯒ ꯅꯤꯊꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯠꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯌꯥꯎꯏ꯫
1: ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯗ ꯁꯥꯠꯄ ꯂꯤꯂꯤꯌꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡ ꯈꯛꯇꯗ ꯍꯧꯕ ꯂꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯤ ꯄꯥꯔꯞ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯏꯠ ꯄꯤꯡꯀꯤꯁ ꯑꯣꯏ, ꯃꯄꯥꯟꯗꯅ ꯃꯪꯒ꯭ꯔꯥ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯏꯅ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯁꯥꯠꯁꯨ ꯁꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯒꯨꯝ ꯌꯥꯟꯊꯗꯨꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯐꯖꯕ ꯂꯩꯅꯤ꯫ ꯂꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯇꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯈꯨꯜ ꯂꯩ, ꯈꯥꯗꯅ ꯆꯣꯏꯊꯔ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯡꯗꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯈꯨꯜ ꯂꯩ꯫ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡꯀꯨꯞ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯕꯒꯨꯝ ꯎꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯎꯕ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯨꯍꯜꯂꯤ꯫
0: ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯤꯐꯨꯒ ꯅꯤꯊꯣꯏꯗ ꯗ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯛꯈꯪꯕꯤꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯌꯣꯜꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯃꯔꯤꯐꯨꯒ ꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯇꯥꯎꯟ ꯂꯩ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯡ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯏ꯫ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯁꯣꯡ ꯇꯤꯃꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫
1: ꯅꯤꯡꯊꯤꯔꯕꯤ ꯂꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯣꯜ ꯈꯛꯇꯗ ꯍꯧꯏ, ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯕꯩꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯩ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯔꯨꯏ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇꯨꯗ ꯁꯤꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯔꯨꯏꯕꯨ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯨꯝꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯄꯥꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ꯫
0: ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯂꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯗꯨꯅꯇ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯃꯃꯣꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯨꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯁꯦ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯤꯐꯨꯒ ꯃꯥꯄꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛꯈꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫
1: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ इं कुंजा लिसिंग अनि तरा तरे तगी हौरदुना सिरोई लिली फेस्टिवल चही खुदिंगी कल्चरल स्टेट फेस्टिवल ओइना पांगथोकपा हौरखी मरी सुबा स्टेट लेवल थाकता स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर टूरिज्म्स हाइना लिसिंग अनि कुनिथोय इंगी मे थागी तांग कुनमंगादगी कुनिपान फाउबा कल्चरल स्टेट फेस्टिवल ओइना पांगथोकी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ना फेस्टिवल असि पांगथोकलीबगी चावरबा मरमदी मालेमदगी खोंगुल मुछिलक्कदौरबा सिरोई लिली हाइरिबा लैरांग असिबु मतम चाना कंजहौनबगी दमकतनी मालेमगी तांगलबा लैरांग असिबु मतम पुंबगी ओइना हौदुना अमदी सातुना लैननबा मखोइबु ngapii senbi naba ekhoi irei cha khudingmak wakhal tamin nanabagi mitingdani festival asi ukhrul district ki tnl ground phangrei amasung the bakshi ground da pangthui
0: festival asi da makhal kaya gi traditional cultural activity kaya amasu pangthoktna festival asi bu he namapung phalli manipur gi tangnaba lei makhal asi gua da leiba Department of Environment and Habitat ki head Sajin Jingsna Bharat ki Awangnongpok Manipur gi Shiroi Jingda chaliba Malayam gi mapham amata da phangraba Shiroi lili hairiba lai ase Kannana ba honamina si haiba gi khongchat lama lakhi
1: Khongchat sida mahakna phongdok lamki Yengsin biba wat laba amadi चेक्सिल हौद्रबदि मालेमदगि खोंगुल मुटख्रगनि हाइना इं कुमजा लिसिंग अनि कुलहुमदोइगि अक्टोबरगि तांग तरा हुमदोइदा फोंदोकलमि रेड दता बुक ऑफ इंडियन प्लांट्स भोलुम वान दसु लै असि मांगखिगदौरे हाइबगि वाफम असि थमदुना लैरिबनि मरम असिना मालेमगि तांगलब लै सिरोई लिली असिबु ऐखोइ पुमनमकना कनमिनसि
2: Tabiri, Sirui Lili. Thoramasi School of Educational Technology, Ibotombi Institute of Education, Mimagi Tengmangaloinana, Shandokchaba Thoramni. Makalmathelgi Thorumkya, Sandoktuna Tanjariba Asi, Akazvani Imphalgi FM Sangai Channel Digini. Hauzi, Yumnam Momona Sakpa, Keso Irengbamna, Sairengba Matamishayama, Taminasi, Isaigi, Saihongna, Aigi Isaigi, Sairol.

आकाशवाणी इम्फाल हुजिक अयुकी पुंग निपान मखाई तारी सिलोंग देगी रिलेदा वांग नोंपोक लमदम सिंगी पाओ ताब फंग बीरगनी।

0: Hi, Tomba.
1: Chie.
0: Nangi 50% discount piba resto Pokemon pack to. Loiri hai ne karmai tori no.
1: Loidi loidi. Kadai de gino da. Aduga ichine ne 50% hai do. 50% khatna te 50 to 60% ni offer piri se. Aduga stock to leitra ga sune. Hojik aduma book tok silaga discount aduma te da adum piba gi khudong cha basu leibini.
0: Hai bidi
1: ne. Kana gumba mana macha gi luhongba gi onput oin hapsening ba. Luhongga de bidi matam khara wali ba. Natraga yung gi darkar oi bedo. Hojik book tok silaga di tha khara gi तुम दो ऐसे शु सिल्वर जुबली की ऑफर ओइना अचाऊब डिस्काउंट पीली बसी के लोने ना अधुमक फंगे तो इन्हें है बा
0: अधुदे इन्हें ये मचानु पीके लोगों बगी है बदो रेस्टो पोकेमोन पार्क सीधा है बनी हाउसिंग मार्क बुक तो उन्हें ना बा है बीरु रगे
2: होइसे रेस्टो ऑफ मैट्रेस मियाम ने है ना खंग पीले हिप पद हक चांग द याम ना कंफर्टेबल ओए बा मोम पाक नी सिल्वर जुबली की ऑफर सिंग असी अदोम जो सोई दन लो भी हो नसी मक लेंशन भी रख सी पेना स्टोर
3: चटकिनु कई दो बगी Hai nasi hok ba matami she ma kan birak ba message ni ojik thengna jari ba sina isi seksak ba bi vidyapati sharma saireng bana bi zent kumar sharma ni isi bu taningi haiduna kan birak liba marup singh di nambol irabot mukhong digi bim inok tomba boy amadi sin haiba haini ibirak pani kan birak liba marup singh amadi good morning manipur nungai na tabiri ba singi dema kudol tok jari Chatkinu, kaidu bagi.

मखल मथिल की थरुम के आज संदोक तुने तहन जरी बरसी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दिगिनी हौजिक पुंफा मसीदा पुदुने लाक्चरी सैसकपा मगी इसई सिंह नसीगी लखुचरीबा सैसकपा मेलोडी क्वीन ऑफ मणिपुर हायर गसु खंगनरीबा लाइश्रम मेमा

मकल मथल के थरुम के संदोक तुन तहन जरीबा सी मेगा हर्षाम हुम दसमिक मंगा दशंदोक चरीबा आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल दिगनी हौजिक मखा तारकपा नुंगाई नुंगाइरबा थरुम सिंह की दमक एक अनाउंसर तंफा मनी लुक्राम दा खुशी नजरी।

0: इंगला बमा की माई थोंगी मम्मी ये दोना सेना हो तो हमी कुप तथा मोई तो मम्मी ता आखी बना नहीं नसी ऐन मई मरक तो ले ली पसे कहीं दौड़े तुम इन्हें ले रहे थे ना कि सुम मोड अम्म तेरी पीयू तो ना
1: अंकल ना पुकार ना नो
0: कहीं दौड़ के
1: इमाग ये एक पसे तम मताओ कर्म ना मापू मसीदा
0: करिया है बा सत्तम से नंग बुपोक पे इमाग ही नहीं है बा आयो अतुति ना कि इमाग ही ममिंग करी कावे
1: ये कि इमाग ही ममिंग मैंने का कावे
0: मैंने का नंग मैंने का की मचा मैंने का ना इंगली देना असुकुई रबगी मत उंगसी था सीता ना की वारी ये मुक्तार अब को मुझ क्रबोई कलंबा ये तम हुई ये मेरी है तो मसीस वो अम्म दुना लेरी बोले असुम तो तम ना बरो पर लोई की मेरी है बसी बो पुन्सी वो तांगो ये ओंद्री बो पाव मुत्त बोरे को
1: अंकल अंकल कहीं दौड़ गया अंकल अंकल
0: अनन कहीं वो मुत्त पोता आन गया
1: अंकल
0: आई पोता क्या दें आई पोता

0: इस हरे कृष्णा मांगे दर तो बस दे नते मखोई पाबुंग ना सिंबी दी बसी बु इसा आसी मांग लगे है बिरी ब्रो
1: करी नोरे है इसा थाज बसी बु मांग ने ना बसिन बर नहीं
0: नुपा दो द नत्र बदी लेटर ब्रो आई दिने या बंगम जरोई को आई बु फट्टे भी मामा ता हन बिगन
1: नती तब ना ज्ञान दान खन सी गई दोगे हा हो जी सुम बतम लेरी मची दुना हाय बु दुदा आई शु कदाई नो हाय ना हाय बगी वानी ने
0: ओ संगा वाई जनिंग दी ये अदुगी सुम थकता सिपाही हाय बा पुलिस हाय बदने इसा थाज बा होरा दी सिफम ना फम खंग दबो पुंसी यदु पुंसी रो
1: सिपाई वे लगे हेक ते सिरनी हाय ब्रो हा सिपाई वे दबो मिसु नंदा ना मनु मतम चाद ना सिब यावरी सिदी
0: अदो आइ दी पाम जदे सुपा हम हे पाम जदे हाय रिसिन मेना कागी दमक त दिने ताइबुंगो सना दुगी मसा अतो मदुगा वा लोय नखरे आइ सो पयारो हाय जा होरी बसिन को मई पाबु
1: कनादा कनागा हा करम मतम दा ए भई आइ सु मची यदुगा वा लोय नखरे आइ सु चो पयारो ए
0: भई भई ए मखई पाबु मतुम तगी इसानिना कुसी तौबियो बोगते बि ममानिना आइना हायबदि कदाई दगी ताबिरनि पंगि दको आइना मिगी मसा सिओ इसानि खन योलु बायसे
1: करी नोन हे ममा अब जिक्त नौ नवा पोथोल रिसि बो हा नदि मेना कासिन ता घर करी खनजिनि हा लुंगा हिगत्रा हायबा
0: इसाना लुंगा हिखिरोय हायबदि खनबिबा ममा आइगि दि खनबिदबनि ने मयाम गि पेन नब हायदुना मसी फाव हाइनिंग बवा कयाम खांग दुना लापने इ मतुम दगी हेक पोक्स बिसागो योलो पने हौजिक दादा आइ गि हक लाइत बने
1: हे करी नो ने हे नंग ने गांग रे बवा सिंग अदु बो हा
0: नुंगाइ तब कया से खांग जिन दुना मसी फाव लै रख पने इसानु पा पोकते हाइ दुना जगोई साबिया दो यम मसी द पुसि लिखै बनत्र
1: ये ये
0: धरमदि काइर रोय को हाइ दुना खांग दुना लै खिबे ईश्वर नदी याद दुना अतुम्बी अदुसु नुपी होइन पोले दना
1: नति रे हौ करब वारी सिंग अदु हौ दु अगा औ जि करी काने कि गते के हाइबा
0: आइ पेन दे आइ याम न पेन दे
1: जि लाइ होइ करब मिसक अदो पुथु तु नांग बा हौने देने महाक सु एंगोन द लेब दगी मनिंग थुंग दना पुन सिलोंग करबनि मान पाम जब जगो यदो एइन छान कि दे महाक कि खोंग जि खोंग जि यदो लोकतो किबन नुमित अदुदगी महा की थवाय छु याउने चैखरेदना हा पुमनबक असे नंग एगि लाइबकता तमलम पनी हैना खतु पतावने हाइबा को
0: मसी फाउबदा आइन कनाद करी अकाइबा पेनन बतव याखरब
1: याउगे याउगे हाइबा मामा मवोइना नंगि पुक्सेला दुबदी आइन थागतब नमदी नंगन बिनकाबो योकपसे आइ याम नपेले इकी थमोई बुसु नंग शांति फंगलिबले
0: ओ थागत पिरनु ताजे निंद्रे
1: ए ओई इचानी हाइदना सु आइगी हक लैत्रवनि नहा कि नचानी लंगी कुसिलि तव तबो मागी वखलदो मामा मपा मोइना ए कोइना कितम खंदादुना येंग सि हाइबनिदा हा मसा मसा सु याने जई लायर जरबसु नुपा मसादो फन भव मारिने आइदि हा मची एदुना वा न छेमजर खरबनि एवान हरकबा मसानासु हेन फाबनिदा को
0: फरे मखोय पाबुंग न तसेन यानिंगलाबनिना आइसु याजरे
1: आ
0: अदुगा असिमतंगदि हाइबिखु मागी सिफाइगी।

दोस्तों, आज तो डॉर का दिन है। डॉर माने आपके लिए, जो अपने नाम लिखकर अपने नाम की दौर में है, अपने गीत की दौर में है और भेज रहे हैं हमें बहुत प्यारे प्यारे से गीत, चुनिंदा गीत, अपने पसंदीदा गीत, गीतमाला की इस कार्यक्रम को पूरा निभाने के लिए, पूरा करने के लिए। और हम भी आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं, तैयार बैठे हैं आपके गीतों के साथ। और जो पहला गीत है, चलो सजना, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से ये गीत है। और इस गीत के लिए जो हमें मेल, खासकर मेल भेजा है बहुत दूर से, राजस्थान से, पद्मापुर जिला श्री गंगा नगर से हैं। उनका नाम है, शुभ नाम है, पूरी फैमिली लगता है, महर अरोरा, ममता अरोरा, कीर्ति अरोरा और भूमिका अरोरा के नाम पर ये गीत है।

दोस्तों, ठंडी हवा के साथ ये पैगाम है हमारे दोस्त एनजी रणबीर पोरम्पा चुथेक से हैं और उनके साथ उनके दोस्त हैं बेबी मंगांग जो हैं थौबाल खेतरी लगाई से और पसंद करना चाहते हैं इस गीत को सुनने के लिए आशा भोसले की गायन में ये गीत है शकील बदायूनी की रचना और रवि के संगीत में

इस गर्मी के मौसम में ये ठंडी हवा कैसा लगा दोस्तों आपको? हमें तो बहुत बहुत अच्छा लगा और सुकून मिला। अगला गीत है जो भी है, ये भी तो एक सुकून भरा हुआ गीत है। बाबू फिल्म से ये गीत है, किशोर कुमार की गायन में, जीवन का सपना लिए। ये गीत है और जीवन का सपना देखते हुए हमारे दोस्तों के नाम है W. नंदो और उनके साथ बहुत सारे दोस्त हैं, सुशीला, सदानंदा, दिव्या, लक्ष्मी, 500 पार्ट टू से यामबुंग इनाउचा, जनमेंजोई थियाम, लैसांग खोंग से थियाम राम, कौवा नौरिम लेकाई से महेंद्र वांगखेमचा और नम्बोल फोइजिंग से इपो चौपा।

काश काश कि ये महीना भी सावन का महीना ही हो, और काश ये इनका जो पसंदीदा गीत है हमेशा की तरह, हमेशा हमेशा की तरह गीतमाला पर छाए रहे। मिलन फिल्म से आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीत संगीत में ये गीत है मुकेश और लता मंगेशकर की गायन में, और पसंद करने वाले हमारे दोस्तों के नाम हैं वाकम्बम जॉन, बिजोइसना, और साथ में पुष्परानी, सोनिया, देनी और अनीता हैंगांग मयाई लेकाई से।

तेरे नाम और तेरे नाम पर ये गीत है उदित नारायण की आवाज़ में, समीर की लेखन और हिमेश रेशमिया के संगीत में। और हमें खूब भरपूर अपने नाम से पूरा पूरा चुनकर ये मेल, ये दो मेल्स मिले हैं हमें। कौतुक खुनऊ से एमजे मंगांग, मानंद मंगांग, विद्यानंद मंगांग, बर्लिन, जैकी चान लेशांग थेम, थोबीशना और रोशिबिना के नाम पर। और दूसरे एक और मेल है कदमतला जीरीबाम से, निंगथौजम ऋषि जयश्री के ब्रह्म, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है, कब्राबम सोफिया, जयश्री कब्राबम और साथ में है सोफिया राजकुमारी। तेरे नाम और उनके ही नाम पर ये सारा गीत निर्भर है।

तेरी सुर और मेरे गीत और बनता है सुरसागर। और गीतमाला में ये सुरसागर लेकर आए हैं हमारे दोस्त ननाओ जो है यश कुल से, और ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गूंज उठी शहनाई फिल्म से, भारत व्यास के लेख और वसंत देसाई के संगीत में ये गीत।

दोस्त, ये गीत है महबूबा फिल्म से। आनंद बख्श की रचना पर ये गीत है, जिस पर अपनी संगीत से सवारा राहुल देव बर्मन ने, और इस गीत के फरमाइश करता है राइजिंग सन ड्रेसेस से, थांगमई बन थाओ कॉम्प्लेक्स से हैं। थियाम राजेंद्र लुआंग, नोंगान बी वोनिका कंगलेचा लुआंग, चिंगमेरोंग ममांग लेकाई से आर के सुनील, आर के किरण बला, आर के वीनस, रीता अराम्बम, इबेम नुशी चिंगांगबम। और दोस्त, इस बार आप, हम अनुरोध करते हैं, सुन लीजिएगा लता मंगेशकर की नहीं है, ये गायन है किशोर कुमार की, ये हमारी तरफ से है। और अगली बार ज़रूर आपका जो लिखा हुआ उस गायिका के नाम पर गीत सुनाया जाएगा।

मखल मथिल थरुम क्या संदोकतन तहन जरिब शाकाश वानी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल देगी नहीं संगाई चैनल दा हुजी लांथुक चरी अरीबा मणिपुरी मतम इशे सिंग आहान बदल लोखुच चरी अरीबंग तो बिशनागी खुंजेल दा बीजेंद्र कुमार शर्मना सैरिंग बिशेई।

0: Western Music Tabire Tabire Bacha Akash Bani Imphalgi FM Sangai Channel Ni Hojik Nongthilgi Pungohum Tare Manipuri Da Pau Tabire Si
1: Akash Bani Imphal Ningtho Khongjam Suni Na Pau Pajare मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान गा उख्रुल जिला गी सिनाकैथै खुलि लुचिंबसिंग अमदि उख्रुल गी एमएलए राम मुइभागा ngasi मुख्यमंत्री गी सेक्रेटरीट उनदुना वाफम कया खनख्रे मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट की चेयरुल मना हाय कांगलु कुदिंग मकि मियोय सिंग ना हिंसा थादोक्तुना शांति गी लंबी द संसिन मिनासि मफम अतुदा अथुब मतम द सुंगसोय सोयदना शांति थामना बहोन मिनासि सरकार ने नहा सिंग द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पिदुना थबक पिनब थौरांग सिंग पाखलि चेयरुल असिना मका ताना हाय उख्रुल गी एमएलए राम मुइभा अमदि खुंजा सिंहना महादेवदिगी सिना कैथै खुल फाउबा सिक्युरिटी थम्बिनब वाफम सिंह थमलमखे सिना कैथैदा हक्सेल गी मतिक चाब खुदों जाब सिंह फंगनबसु मुख्यमंत्रीदा हायरमखे तामेंगलोंग जॉइंट ट्राइब्स वुमेन्स एसोसिएशन असिन्दु नंगासि तामेंगलोंग हेडक्वार्टर्स दलैबा जादोनोंग पार्क दा वाकत मिफम अम चथकी मिफम असिना लेंगमै नगागी म्युइ तरुक अथुब मतम द थादोक पिरकनाबा दाबी तौरी मरा लैब म्युइ सिंग अथुब मतम द फादु न चैराक पिनबसु लुप असिना सरकार द अपील तौरी रोंगमै बैप्टिस्ट सर्विसेस काउंसिल न अथुब मतम द राइजेस्ट शांति मसुंग तंगदुलै ताब हंजिल हनबा ईश्वर द थौनी क्रे लुप असिना कांगलुप कांगलुप सिंग न फाजिनदु न थामलिब म्युइ सिंग अथुब मतम द थादोक पिरकनबसु अपील तौरी मालियम गी अदै मफम सिंग द पांगथोक नबगु मणिपुर द सुंगासि मालियम गी मेट्रोलॉजी नुमित पालन थौरम पांगथोकली कुमसी सही गी हिरमना मेट्रोलॉजी Building trust in policy making haibasini rajyagi weather and measures department asinduna world meteorology day ngasi lampel da leba bibagasi ki complex ta pangthukli rajyagi social welfare bibang asinduna numit taruk ni chupna khumal lampak ta leba manipur state bal bhavan da chatharakpa workshop ki ngasi marini chenma numita folk dance ki matang da angang sing da akupawarol sing takpi tambiri tha sigi tara tareti ki satharakli ba workshop asigi manung chana hayeng dagi angang sing da sanapot sem sabagi matang da takpi tambigani rashtrapati Draupadi Murmu na hairi vikshit bharat ki pandamasi yauna ba hona bada thengna ba kudong chada ba kudimak amat oina thengna minasi rashtrapati bhavan da lisingani kunmari batch ki IAS officer sing ga unabada Srimati Murmu na hai na oiba officer sing na tongan tongan ba lam sing da top top mawong da thabak sing paikhatki mang na hai अचुम्ब फिरेप लौब हाइबसि मियाम गिदमक यामनमक तंगाई फदे पंजाब पुलिस ना राज्य दुगी तोंगान तोंगान मफम सिंह दा थिबो मुगी थबक चथबदा हेरोइन किलोग्राम मरी अमसुंग मेथमफेटामाइन किलोग्राम तरा गा कोनना मियो अनी फारे हारी मियो अनी असे मालेम गि थाकदा ड्रग ललोन बगी थबक तोबनी हारी मखोय अनीना पंजाब अमदि नई दिल्ली द ड्रग सिंह असे योना बखो नरमबनी पुलिस की पाउना हाय फारब मियो अनी सिगे मनुंग अमदि इकुई कुई द्रिब ममांगदा दुबई गि हिरोइन अमसुंग मेटाफेटामाइन असि करमना पुतोक पुछिन तौगनी हाबगी मतांगदा निंथिना ट्रेन तौरगा थोलोकपनी हाइरि फारबसिंग मखाताना वहंग पहंग चथरी डीआरडीओ ना अनमैन एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल V3 ngasi mai pangna changing tokre thorang asi varana atmanirbhar oinabagi lamda changsilakpa khongthang amani changing asi kunur de leba DRDO gi test range ta nongthakta gi leimai da amasung nongthakta gi nongthakta kaptuna chathaki bani मिसाइल असि डीआरडीओ गी अतै लेबोरेटरी सिंगा लोइनना रिसर्च सेंटर इमारत साबनी ngaksel mantri rajnath singh asangin asigi damak thagat pa phongto khre barna yumbu iduna meghalay gi umaroi military station da pragati lisingani kuntaruk military exercise yumlona balai baktara ni thoi ga lona na hokre ngaksel mantra loina hai yumlona ri balai baktara ni thoi bhutan

कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेचेलेस, श्रीलंका और वियतनाम एक्सरसाइज सरुक यारी नुमित नि चुना चथगद एक्सरसाइज मरुओं काउंटर टेरोरीज्म ऑपरेशन सिंग असुप उमंग चिंदा चिंद करम पांगे मरुओं मीटिंग थमली नोंसु बेंगोल की मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी माकी सरकार की मपुंग मीटिंग अवांग थंग बेंगोल लम खुदिगमक्ता साखोत हनब होनब हाय था अमुक मुक मफम चतुना हौजी हौजी पाइखलेब साखोत थौरांग सिंग की थबक थौरम सिंग येंसिनगनी अमदि सरकार ने पाइखत स्कीम सिंग मियामदा निंथिन फंगलिब्रा हायबदुसु येंसिनगनी मांगना हाय अवांग थंग बेंगोल की साखोत थौरांग की मंत्री ना सयोल अमद अमुमुक सिलीगुरी चतुना मियाम की वाक चिंग तानब जनता दरबार पांथोकनी श्री अधिकारी ना मुख्यमंत्री ओइखरब मतुंग गसी सिलीगुरी चतुना येंसिनख्रे मुख्यमंत्री ने सिलीगुरी की बीजेपी ऑफिस अवांग थंग बेंगोल की बीजेपी की कार्यकर्ता सिंग दोल की एमपी एमएलए सिंग उनदुना वाफम कया खनख्रे पाउ लोइजरे।

0: 누기 싱두 슈파제나 야실러가네 담비야이네
1: 예.
0: 아두나 와이름 떼이나봐 다리바 인상나 비 싱두 사이비쇼 좀 야이드나
1: 원희
0: 예.
2: 바바
0: 하오
2: 아두마니 농줄 아디 싱해 회무도 홀러래과
0: 싱 레이럽다부 가이도보기 와네 싱 혼돌이노 하
1: 하와이디 유마 야마기 삑아슈삑나 부크리마사 아마맘디야 좀 레이나라미
0: 미디 숨숨 양팔럭뻔이나 레펌 짜펌 레럭다부더기 부크리 분진 분진들의 욤 사진들의 신이래나
1: 군기 부크리 아서보드슈 마얌짱드는 속보다 이싱 무빵얌얌나 레람도 만드레다
0: 마얌짱드는 속보다 아 거과들 레이그럽뻔이네 떠오리시
2: 아두에디 가이데기 이싱 속도이바
0: 군기 부크리 아서보시 깡버가 톨어디 와더리 뻔이
1: ishing hairi basi lairak taba thoklabadi thawai panba jiba khuting maksu hingduna laibang amloi dauri bani ishing bu miyoi bagi hingna bagi damak khwaide ki maru eba posak amani hai basi khangan na bagi damak ta jahi khudingi mars thagi tarik kuni thoi asibu world water day hai duna hek hek pangthoi
3: united nations na mi amagi nomda changda ba yatra ba thakna chananaba iru maitha janaba phisu phijam taunaba amadi toilet kidamak ising liter yangkhai di tangai phadana changani hairi masidagi tana ising sijinnaba thoklabadi mi adu masha pharoi hairi
1: ising na khwaidagi phangbada waba matamsi nongchudaba kalen thagi matamsi dana khwaidagi heli hairiba matamsida miyamna isinggidamak tawanei ising leiba pukhri achauba turel sing amadi patna singbada lapna lapna chatuna ising ho laga sijene
3: singi lamdadi masigumba matamasi khwaidagi waba matam achauba kon lik amadi achauba wagi utong asang basing samda hap laga madubu manangalnda poduna angamba ising leiba lok tamna kumthai लोग तो कि इसिंग सोक लब मतुंग द सम द हाप तो ना अंगम्ब चिंग द कादु ना मयुम याऊ ना बपुरे
1: मियाम की दमक पीरी बा तोती इसिंग शो इसिंग लोपा मोरी बा दाम अमदी तुरेल सिंगी इसिंग कंखी तो ना इसिंग सिंग खत पे याद बदगी इसिंग पी बा हेक हेक लेव की बा मतांग याऊ रे मशी गुंबा मतम सीधा इसिंग पुबा गाड़ी दगी ममल तांग न पी दुना इसिंग लय रगा हेक हेक सीजन न बा अखोई न थेंग नरी बसी ने
0: कांगे दर बेंबे इसिंग पंग दबो मतम दा क्या वाई है बसी
2: बाबा इसिंग शिबो सुम सुम पंग ला अरोई ड्रा
0: अदु माइने इसिंग पंग दबा है जुदी बाग हेक तो ओर कदो बना दिया था अखोई ना इसिंग पाम बो मतम दा मरांग काई न पंग दबो ही वानी
1: दा ओ से से खितंग आ रे को नोंचुबे हेक हौरपदगी दिने अदुदा इसिं चाव हौरे अदुदा ना इसिं ना युंग कै लौ लोय ना थुमजिन ग्रे गाना ई पाउदा दुम लादाउ
2: ए अदुएदी नोंग सिदी चही खुदिंगी अदुम जुजानिना
0: चुई चुई चुई शाबो जुरीबो नोंसी गमाई तौरग जुरे इनो हाइबुदुबु खंगिंग दरेने
2: खंगिंगे बाबा
0: हाइगे हाइगे
1: कुम अमगी नोंचुबकी मओंग असी माइलेम पृथ्वी की ओइना सही मिलियन कयामुक चथदुना सुम लाकली बनी मसी करीदगी नो हाइबदा वाटर साइकल हाइरिबा थोंग असी लेपतना सुमक माइलेम पृथ्वी दा चथदुना अदुमक लाकबदगिनी
3: अइखोइना इसिंग हाइरगदी मही ओइबा असी खक्त ओइना खंगनै अदुबु इसिंग हाइरिबा पोषक कसी द याव पोषक क चप मानन याव पोषक ती इसिंग खक्त नत्ते इसिंग नत्तब तोंगान तोंगान बपोषक अनिखक सुलेरी
1: मही ओइन उरीबा इसिंग ना सारकलब मतमदा इसिंग मनिल ओइदुना नो ओनखि अदुगा अमुक इसिंग ना याम ना इंग लगना अकनब मपंग ओइबा उन ओनखिबा अइखोइना अदुमक उरी मसिबु इसिंगि सक्लोन अहोम हाइरगा खंगने
3: इसिंग ना इंग बदगी उन ओनखिबसिना सागत लकलब मतमदा इसिंग ओइना मही चेनथोरगी इसिंग ना अमुक सागत लकलब मतमदना इसिंग मनिल अमुक ओनदुना अंगौब नोंगि नोंगदुम ओइकि मसिगुम्बा नोंगि नोंगदुम असिना इंथरकलब मतमदना नोंगि नोंगलिक ओइना अमुक सुथरगी
1: मसिगुम्बा इसिंगि सक्लोन अहुम असिना छिनदोक छिनजिन तौबदगी मालेम पृथ्वीगी ओइना इसिंगि

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग सर।
0: फोन तो बिरा किसी का ना हो बिरा बनो मिंगले फोन गम तंग तक पियो।
1: फोन तो मेरे कई कुंभ मका देगी नवरे में जाने सर।
0: होय होय साइज से उन्हें बिरा बिरा हो जिक सी बो। होय होय ऐसी सिबु करीकरम व फिल्म की सही ताबी निंगली बनो।
1: जो की थमोगी एक यंगोई ने चप तुम जता देगी सर।
0: होय होय योट की थमोई की एक यांगोई ना सकपा अजित बाबू निंग थोजम ना सैरिंग बा ननाउ सगोल मांग ना सैरांग बा इसे इसी ओइगनी हाइने खाली चंबिरब्रा
1: मन मनी साल।
0: होय होय खुन पम माइके इसी बो हजिक से लव सिंग पान बदी होंगनबे मतम दी ओइद्री कमाइना लबुक अहांग बसिंग सिदी मना मसिंग था।
1: लव जे खगदी पान भावरे कोइ गिदी गबन कोपिंग वइना तौवा अंगन बगी
0: ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯤꯅ?
1: ꯃꯁꯤ ꯃꯦ ꯖꯨꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯛꯀꯅꯤꯗ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯔꯒꯦꯗ
0: ꯇꯥꯒꯠꯆꯩ

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड इवनिंग मणिपुर दा तराम नो ओक्चेरी
1: गुड इवनिंग सर
0: गुड इवनिंग
1: सर
0: यानी करिक्रम बफ़ों की सही तासी के
1: बसंत नोंगालम दाई उजानिंग दो सक्तम तो बुदो
0: बसंत की नोंगालम दाई है भी बको इसे इसी की सैरिंग बा सैरांग बुदी खंग भी ब्रो
1: हमजे ट्रेसर आज बुदी
0: हाय मतंग दा खलक पु मतंग दा निंसिंग बिना बा अमुक्तंग निंसिंग जगे रोसिबिना की नाइटों कोंजल दा मनाउ भी एमएम ना सैरिंग बा आरकेजिते ना सैरांग भी सही नी फोन तो बिरली सी मिंगले फोन कम तंग ताकती हूँ
1: ऐ निगम थोंग जाओ के जी नोंग कम तनु जा
0: नोंग माई थेम तनु जा है भी बुको
1: नोंग माई कापम
0: नोंग माई कापम नोंग माई कापम तनु जा हान ममांग द अंतकी थागी गुड मॉर्निंग मणिपुर द अदगी गुड इवनिंग मणिपुर द पी लाइव फोनिंग प्रोग्राम द फंग बी की बगल लेरब्रा ओ
1: गुड गुड आफ्टरनून द दी फंग रे सर
0: होय होय साइसिंग दिउ न बिरब्र हुजिक सिबो करी मथेन तो बिखर गे
1: मारियन थोंगे सा
0: होय होय मारियन थोंग बसु चावी रेगा नसीगी गुड इवनिंग मणिपुर गी अदोम ना पाम न खनवी रखली बा इसे यसी खुदुल दमजरी मैं हम पुने तामिन नरसी
1: थैंक यू सर
0: ठाकेचे

0: हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मणिपुर द तराम नवक चेरी।
0: गुड इवनिंग सर। फोन तो जरिए कि कौन थोक जमाने का दिन संजय में मिल रहा कोई सर।
1: बिना है भी बुका
0: इंदिरा है मिस सर।
1: इंदिरा है भी वाह वाह इंदिरा करी करम ब इसे ही तासी के ऐसी सिबु
0: सर इनसे उनके चेंट लंगी सर तागर जी में सर पर नंगी थर मुझे नहीं इनसे लिखो सिहानी तो वो दुकान जरिए सर
1: सरिता

खुदुलगेरी सुबदा अकंग बना चोम फिल्म दगी पुष्पारानी की नाइटों खुंजलदा बिनुरंजन उनामना सेरिंगबा राहुल ब्लूना सेरंग विषय ममू खुदुल दमजरी

खुदोलगी हम सुबुदा दाकफम फिल्म दगी अफाउगी नाइटों कंजल्दा बिमोल फिबुंगना सेरिंगबा अफाउ मुसामंगना सेरांग बिशे ममु खुदोल दमचरी

भाई बिल्कुल चेहरा हम भी नहीं देख सकते लेकिन गीतों से बढ़िया और क्या ही माध्यम हो सकता है दिल में उतरने का, आप भी मानते हैं ना। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर श्रृंगार और मैं हूँ आपके साथ रितिका और आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये गीत आपने सुना फिल्म सलामी का, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में, नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत। कहते हैं ना दोस्तों कि जब प्यार हो जाता है ना तो फिर दूरियां भी भाई सहन नहीं होती है, हर पल बस उसी इंसान की याद आती रहती है और मन होता है कि बस एक एक पल उसके साथ बिताने को मिल जाए। जो अगला गीत है ना वो बस उन्हीं दिलों के लिए है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर श्रृंगार मेरे यानी रितिका के साथ। और कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार बहुत ही अजीब होता है, कभी एक मुस्कुराहट से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब दिल सिर्फ इतना कहता है कि मोहब्बत अगर किसी को कहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो।

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। 11:10 पर गीत मेरे मनमीत में होगी आपसे फिर से मुलाकात, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि

0: आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं

राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया ये गीत आपने सुना 1976 में आई फिल्म महबूबा से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और मैं हूं आपके साथ ऋतिका।

कल आज और कल फिल्म से आपने ये गीत सुना, किशोर कुमार की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत।

मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात

तो दोस्तों गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, पर आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी

0: को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलिदिस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को बैठक होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन बनाए थे। 148 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas, including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Union Home Minister Amit Shah has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Shah said, "This honour is a tribute to millions of Indian farmers and all those associated with the agricultural sector." Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman have congratulated Prime Minister Modi over the conferment of FAO's honour. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna yesterday during a land handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. Union Minister for Road, Transport and Highways Nitin Gadkari has reviewed the quality and maintenance progress of more than 4,000 kilometres of national highway projects in Assam at a high-level meeting in New Delhi yesterday. Mr. Gadkari stressed the need to speed up on-ground execution, strengthen quality monitoring mechanisms and adopt modern construction practices to improve asset durability and riding quality. Union Ministers of State Ajay Tamta and Harsh Malhotra, along with officials from the Ministry and the National Highways Authority of India, attended the meeting. Department of Drinking Water and Sanitation has organized the 7th edition of the multilingual Sujal Gram Samvad in New Delhi. Addressing the event yesterday, Secretary in the Department Ashok K.K. Meena said, Sujal Gram Samvad is a platform to learn from Gram Panchayat's experiences and challenges. He said under Jal Jeevan Mission 2.0, the focus has shifted towards community-led and sustainable management of rural drinking water systems. Senior IPS Officer Shibash Kabiraj assumed charge as Commissioner of Police Gurugram yesterday. Following his recent transfer from Panchkula district, Kabiraj is an experienced, efficient and dedicated officer who has made significant contributions to law and order, crime control and police administration. Madhya Pradesh Cabinet has approved projects and welfare measures of 30,555 crore rupees, including allocations for pension schemes, crop insurance and labour welfare, besides clearing the state transfer policy for 2026. Indian Navy has marked the successful culmination of the landmark IOS Sagar deployment with the flag-in of INS Sunaina at Kochi. The deployment involved an extensive multinational mission across the Indian Ocean region. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन सकते हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. खामोश निगाहों से जब तुम बात करते हो तो ये फुर्सत के हर पल में बस तुम्हारी याद दिलाते हैं.

वो अपनी नशीली निगाहों से जब हमें देखते हैं हम घबरा कर आंखें चुका लेते हैं। कौन मिलाए उनकी निगाहों से निगाहें, सुना है वो आंखों से ही अपना बना लेते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कार्यक्रम है निशिगंधा, मैं हूं आपके साथ अंजू।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

तुमसे बिछड़कर तुमसे मिलना कुछ ये एहसास दिलाता है मुझे कि कुछ याद आता है मुझे कि यूं ही किसी रोज मैंने तुम्हारे शहर में गुजारे यूं ही कुछ रोज मैंने तुम्हारे शहर में गुजारे और देखकर चाय की टपरी मुझे याद आया तुम्हारी और मैंने रुककर कहा एक कप चाय और पीछे से आवाज आई अरे एक नहीं दो

उठते हैं जब कदम तेरे, तो ये बहारें भी शर्मा जाती हैं। उठते हैं जब कदम तेरे, तो ये बहारें भी शर्मा जाती हैं। सामने जो आती है तू, तो चांद की चमक भी फीकी पड़ जाती है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्य पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन, मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between PM Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, PM Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.
1: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
2: Later in the day, PM Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization, FAO, at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Q. Dongyu. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna yesterday during a land handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. Cyprus President Nikos Christodoulides arrived in Mumbai last evening on a three-day official visit to India, accompanied by a high-level delegation. He was received at the airport by Jishnu Dev Verma and Devendra Fadnavis. The delegation will travel to Delhi today. The Cyprus President is scheduled to meet Narendra Modi tomorrow for talks on further strengthening bilateral cooperation in various sectors. Indian Navy has marked the successful culmination of the landmark IOS Sagar deployment with the flagging of INS Sunanya at Kochi. The deployment involved an extensive multinational mission across the Indian Ocean region. The Defence Ministry yesterday said the joint mission, involving 38 personnel from 16 partner nations, showcased India's emergence as a preferred security partner in the region. Uttar Pradesh government has announced the appointment of the chairman and members of the newly constituted Uttar Pradesh State Rural Local Bodies Dedicated Backward Classes Commission. Issued by the Panchayati Raj Department, the notification marks a key step towards ensuring representation of backward classes in the state's rural local self-governing bodies. The commission has been formed to study and evaluate the legal framework for reservation of other backward classes in the three-tier Panchayati Raj institutions across the state. World Health Organization has said it could take up to 9 months for a vaccine against this particular strain of Ebola to be ready. WHO advisor Dr. Vasi Murthy said two candidate vaccines against the Bundibugyo strain are currently under development, but neither has yet undergone clinical trials. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said there have been around 600 suspected Ebola cases and 139 suspected deaths so far. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at the Eden Gardens in Kolkata. Put into bat first, Mumbai Indians posted 147 runs for 8 in 20 overs. In reply, Kolkata overhauled the target for 6 in 18.5 overs. Today, Gujarat Titans will face Chennai Super Kings in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों समय हुआ 1:11 और 9 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कहानी शुरू हुई थी एक छोटी सी मुलाकात से, अब बात आगे बढ़ गई है दिन रात की हर एक बात से। तुम्हारी हर एक मुस्कान पर दिल हार बैठे हैं हम अब, और कोई ख्वाहिश नहीं इस हसीन शुरुआत के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खूबसूरती की इंतहा हो तुम, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खूबसूरती की इंतहा हो तुम, पर मुझे तो लगता है ये कोई दुआ है जो कबूल हो गई है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों गीत सुहाने सुन रहे हैं आप अंजू के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुना है तुम हर चीज का हिसाब रखते हो, फिर बताओ कि मेरी मोहब्बत का क्या हिसाब दोगे।

उसी कार्यक्रम का आखिरी गीत है अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहूंगे आपके साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्य पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है।

समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आपको बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जख्म दिल अभी भी वैसे का वैसा ही है, जख्म दिल अभी भी वैसे का वैसा ही है, और तेरे बिना जीना जीना भी कोई जीना सा है।

मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात

अब लौट के मत आना, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। अब लौट के मत आना, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। वो रास्ता ही छोड़ दिया जहां तेरी कोई गली आती नहीं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

खत अधूरे थे मगर वो चिट्ठियां अच्छी लगी। कागज उससे सही नजदीकियां अच्छी लगी। रात भी खामोश थी और चांद भी गमगीन था। आंख में डोरे लिए वो सुर्खियां अच्छी लगी। जिक्र में भी नाम उनका हम ना ले पाए कभी। प्यार में इन बंदिशों की चुप्पियां अच्छी लगी।

हम तो बुत बन गए तेरे इंतजार में, हम तो बुत बन गए तेरे इंतजार में, एक तुम आए भी नहीं और मेरी जान भी ले गए।

0: दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर पंकज गोस्वामी रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभरात्रि।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास केंद्र पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला लिया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही। मैं हूं पंकज आपके साथ और आधी रात के 3:11 हो चुके हैं, तो इस शो की शुरुआत करते हैं और फिर दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं, लेकिन अभी के लिए बरसात की एक रात मूवी से इस गाने से ही इस शो को शुरू करते हैं और लता जी और किशोर कुमार की आवाज में। तो अभी इन गानों का मजा लीजिए, दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

इन फिल्मों का दौर बेशक बीत गया हो लेकिन पुराने गानों का यह दौर कभी नहीं बीतेगा क्योंकि इन गानों ने मानो अमृत पी लिया हो। आधी रात की इस खामोशी में मैं आपका साथ देने के लिए मैं पंकज हूँ आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर शो है हमराही और जिसमें पूरे घंटे मैं प्ले करूंगा पुराने ड्यूएट्स गाने आपके लिए। वैसे बड़े दिनों बाद में आपसे मिल रहा हूँ और सच में बहुत मिस किया मैंने आपको और इन गानों को सच्ची। तो तसल्ली से इन हसीन गीतों का मजा लीजिए और मैं इन दो गानों

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

एकता मूवी का ये गाना था लता जी और किशोर कुमार की आवाज थी आर डी बर्मन का म्यूजिक और गुलजार के बोल वैसे अगर चांद की चोरी इतनी आसान होती तो हर कोई उसे अपने पसंदीदा मर्द या महबूबा को दे देता लेकिन खैर वैसे अपनी लवी डवी के चेहरे को चांद से कंपेयर करके ना उसे खुश तो किया ही जा सकता है इतना तो लोग करते ही है वैसे मैं हूं पंकज आपके साथ हमराही शो में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और हमेशा उसे ही अपना हमराही बनाइए जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो यकीन मानिए आज के टाइम में प्यार मिलना सच में बहुत मुश्किल बात है और अगर मिल जाए तो फिर आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं है

बहुत खूबसूरत ये गाना था, खयाम का म्यूजिक निदा फासली के बोल और ना खुदा मूवी से ये गाना था, नितिन मुकेश और लता जी की आवाज में। हमारी दिक्कत पता ये है कि किसी से भी अपने प्यार का इजहार करने में ना हम बहुत टाइम लगाते हैं, या फिर हद से ज्यादा ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा और हम कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, मतलब और भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग हम करते हैं, और कई बार तो इसी उथल पुथल में जो है दूसरा इंसान अपनी राह ही बदल लेता है और फिर आप एक कमाल का इंसान अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खो देते हैं। प्यार ही तो है, कह दो ताकि आपको चुप रहने का ये मलाल ना हो कि भाई हमने समय रहते ये बोला नहीं। मैं हूं पंकज, हम राही शो में सिर्फ आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अपने आसपास ना आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको ये गिल्ट रहा होगा कि काश हमने समय रहते अपने पसंदीदा शख्स से अपने प्यार का इजहार कर दिया होता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं और अब सिचुएशन अलग है।

सुल्तानपुरी के लिरिक्स थे और आर डी बर्मन का म्यूजिक था. वैसे एक हेल्दी रिश्ते की पहचान पता ये भी है कि उसमें थोड़ी बहुत तू-तू में भी हो, और अगर ये नहीं है ना तो सचमानी रिश्ता ठंडा है. बाकी मौसम तो गर्म है, इस टाइम भी आधी रात हो रही है और अभी भी गर्मी तो है ही अब क्योंकि मई की ये रात है. बाकी अगले घंटे मैं पंकज आपसे फिर मिलता हूँ दूसरे शो अरुणिमा में. तो इसी तरह गाने एंजॉय करते रहिए हमरा ही शो के, जो दो गाने और बचे हुए हैं, और उसके बाद अगले घंटे में आपसे मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर. आंखें बंद कीजिए, इस गाने में खो जाइए. लेकिन अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, सो प्लीज ध्यान से.

0: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि यह सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार तिबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। सुबह के 4:10 हुए हैं और अब शुरू होता है अगला कार्यक्रम अरुणिमा, और मैं हूं पंकज आपके साथ। और इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूं। अभी के लिए चोर पुलिस मूवी से ये गाना सुनिए लता जी की आवाज में।

रविंद्र जैन के बोल हो और उन्हीं का ही संगीत हो और गाना अच्छा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सुरेश वाडकर और हेमलता की आवाज थी। पहली फिल्म का ये गाना सुना आपने अरुणिमा शो में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मेरे यानी पंकज के साथ। सुबह के 4:18 और 37 सेकंड हुए हैं और स्टूडियो से एकदम लाइव जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे। तो इन दो गाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बस ये कहूंगा कि जिंदगी में ना कुछ कामों को पूरा होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो सब्र करना जरूरी है ताकि काम अच्छा हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये गाना इस तरह से बना हुआ है कि चाहे तो इसे ढलते हुए दिन के समय सुनो तो भी अच्छा लगेगा, और उगते हुए सूरज के टाइम पर सुनो यानी इस टाइम तो भी अच्छा ही लगेगा। कुछ गानों की फितरत ही बहुत खूबसूरत होती है। सलील चौधरी ने इस गाने को म्यूजिक दिया था, योगेश ने लिखा, मुकेश ने गाया और आनंद फिल्म का ये गाना था। इस जिंदगी की पता है कुछ घटनाओं को हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर इतना सीरियसली हावी कर लेते हैं और कि अपने प्रेजेंट टाइम को भी हम जो है खराब कर लेते हैं। हालांकि ये गलत बात है और एक बात ध्यान रखनी है हम सभी को, लाइफ की नहीं कि एक्सपायरी डेट फिक्स है, जाना तो पड़ेगा लेकिन कब ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार तो उस टाइम से पहले ही कई लोग चले जाते हैं। तो जाना तो मतलब है ही, लेकिन साथ कुछ जाना नहीं है तो फिर इसे जो है अच्छे से जीना चाहिए और कभी भी किसी की दूसरों की जिंदगी में जो है हमें खराब नहीं करना चाहिए, और यही इंसानियत है। अरुणिमा शो में मैं हूं पंकज आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। हम दूसरों को कांटे नहीं बल्कि

अपने पॉजिटिव वर्ड्स से किसी को उत्साह से भर देना भी जो है वो भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही ये एक गाना था अंधा कानून मूवी का, किशोरदा की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हंसना रोना जीवन के सिक्के के देखिए दो पहलुओं की तरह है और यही हमारी जिंदगी को जो है ना बैलेंस भी रखता है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि ये दोनों इमोशंस जो है हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। इसका ध्यान तो देखिए हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम इतना एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर अपने माइंड के ऊपर ले लेते हैं कि फिर उसके बाद जो है शरीर में धीरे धीरे रोग पैदा होने लगते हैं, कभी सिर दर्द होने लगता है, कभी कुछ चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा साइड करना चाहिए, ताकि आप जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट पल हैं उनको ऐसे वेस्ट ना कर पाएं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ और शो का नाम है अरुणिमा। अब बाकी तो खैर और कुछ अनलिमिटेड तो नहीं लेने चाहिए दुख, लेकिन हाँ एक चीज है कि आप गाने पूरे अनलिमिटेड एंजॉय कर सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। अभी के लिए जगजीत जी की आवाज में ये गाना।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

खुशी के मारे पांव जमीन पे ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन गर्मियों में तो पांव जमीन पर ही रहते हैं क्योंकि जमीन इतनी गर्म होती है और ठंडक तो कहीं होती नहीं है, तो इसलिए जमीन पर ही रखने पड़ते हैं। लता जी की आवाज इस टाइम सुनना यानी सोने पर सुहागा, और अब जो है थोड़ी देर में सूरज की सोने जैसी रंगत जो है वो आसमान में छा जाएगी क्योंकि सुबह के 4:54 हो चुके हैं और मई का महीना चल रहा है, जल्दी अब दिन निकल आता है। अरुणमय शो का टाइम जो है बस कुछ मिनटों में पूरा होने वाला है और मैं पंकज आपसे अगले घंटे मिलूंगा यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो ये गाना इस शो का लास्ट है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिए और अगले घंटे दूसरे शो में आपसे मिलता

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने शंभूनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमेरिका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। अमेरिका का कहना है कि इस नाकाबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering, and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation. Mr. Modi highlighted that both countries will work together on shipping, ports modernization, logistics, and the blue economy. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also said that both nations are working hard on advanced manufacturing, infrastructure, energy, space, economy, and defense. India and Italy will celebrate 2027 as the year of culture and tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said, stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Prime Minister Narendra Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome, Italy. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists, and workers. The medal was presented by FAO Director General Q. Dongyu. Several union ministers, including Home Minister Amit Shah, Finance Minister Nirmala Sitharaman, and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, have congratulated PM Modi for being honored with the Agricola Medal. Home Minister Amit Shah noted that India has emerged as a global leader in the agricultural sector and the country's agricultural model is setting a benchmark for the whole world. In West Bengal, repoll will be held in the Falta Assembly constituency in South 24 Perganas district today. Voting will start at 7 a.m. and conclude at 6 p.m. A total of six candidates are in the fray, including two independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot formally as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. The BJP's candidate is Debangshu Panda. The Congress has fielded Abdul Razak Molla, while the CPIM has fielded Sambhu Nath Kurmi. Our correspondent reports the Election Commission has made all preparations to ensure peaceful voting. Webcasting facilities are available in all 285 polling stations. The total number of electors in the Falta Assembly constituency stands at more than 2,36,000. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground, Eden Gardens, last night to keep playoff hopes alive. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will begin at 7:30 p.m. The India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. The weather agency has also predicted hot and humid weather conditions over Gangetic West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.

सुबह हो चुकी है, 5:10 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरी यानी पंकज के साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

इस टाइम कितनी जल्दी उजाला हो जाता है ना. अब खैर गर्मियों में तो बहुत जल्दी दिन निकल आता है, दिन बड़े हो जाते हैं और रातें तो छोटी हो ही जाती हैं. खैर अभी आपने एक गाना सुना किशोरदा और आशा जी और अमित कुमार की आवाज में. कस्मे वादे मूवी से इस गाने को लिखा था गुलशन बावरा ने और आर डी बर्मन का म्यूजिक था. 21 मई की एक गर्म सुबह है और भोर सुहानी शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर. और मई में जो है गर्मी धीरे धीरे और तेज होगी और जून जुलाई की गर्मी की तो खैर बात ही मैं क्या बोलूं. इसलिए अब एक काम करिएगा, मतलब मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि जितने भी बाहर के इंपॉर्टेंट काम होते हैं अगर वो हो सके तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके उन कामों को फटाफट खत्म कर लेना चाहिए और दोपहर को ऑफिस या घर के जो काम होते हैं अंदर के जो काम होते हैं उनको कर लेना चाहिए, वही समझदारी होती है. तो खैर इन दो ठंडे ठंडे गानों के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ. ये गाने ना एक्चुअली बिल्कुल ठंडी वाली फीलिंग देते हैं. सुंदर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, मैं पंकज, शो का नाम भोर सुहानी.